सम्मान दुर्योधने दानं सूर्यसुते बलं फलधरे सतिं च कुन्ती सुते विज्ञाने विदुरे भवति भवतां सुतिश्च नारायणी जयन्ती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्व

0: लाही 103.8 MHz।
1: रोसे पेता लुता सेले
2: यंगी गोइला येनो
3: कानुंग रोस मामेगिन
1: मस्या छ्या मामु छ्या मस्या लु मामु लु मस्या मिले मामु
2: यंगी रिमठिम डिंगी ग्यो थनलबे लागिरी यंगीला लोलोनो प्रयासगी
4: कार्यक्रम आदिवासी संसार
2: रेडियो ढोर बाराही 103.8 MHz
3: नाको रसे मुन्न जाटनी पट्ट लाफा को केरसे के मुझनी है।

सम्मान दुर्योधने दानं सूर्यसुते बलं फलधरे सतिं च कुन्ती सुते विज्ञाने विदुरे भवति भवतां सुतिश्च नारायणी जयन्ती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्रि।

0: 103.8 अन्तर्मन को आवाज
1: सेक्शन 1 स्टुडियो लाइट
2: अहिले बिहानको 5 बज्यो
1: टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्प चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना र राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार कर साथ ही पुरानो कर गहना नया गहना संग साठ फेर पनी प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165935001